कोई जो अजी समझ गा मैंने चल लाऊंगा अब इतना आम खाए वो हु कोई जो अस जो सुको के जो खुद पली अब इतना ईसा खाए मो हु कोई दिक्कत फंग पर मत सनो को दादो खाए है हुई दी फोगा ने तने काना काते हुई दी फोगा खाए फोगा फोमन दी रे सुना ने नुने करन दी बाबू दी को कात मई Ibrahim Djungu ko lobel da katin di warte man tinanti per brus na kasbega Hassan Traore yo foga Yakoub Mbali yo foga ro foma nada Mustafa Cissé ki beno Mohamed 5 daka kone yo foga